हाय हाय, कहीं चल दी वो तो करके झगड़ा। ओ मेरी माँ, अब हाल मेरा सुनकर चुप क्यों।

तो अभी आपने फिल्म 10 नंबरी से सुना ये गीत, और आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत, फिल्म आखिरी रास्ता से, और गायक हैं मोहम्मद अजीज।

0: की, एस जानकी और मोहम्मद अजीज की। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है। मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान होगा। इन केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आयोग ने कहा है कि इन मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का निर्णय पर्यवेक्षकों तथा रिटर्निंग अधिकारियों की रिपोर्ट पर लिया गया है। इन केंद्रों पर बुधवार को विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण में वोट डाले गए थे। रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने इन मतदान केंद्रों पर चुनाव रद्द कर दिया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत कच्चे तेल के विश्व के 5वें सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है। सूरत में 3रे वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि ऊर्जा संकट के बाद देश ने न केवल अपनी ऊर्जा आपूर्ति में विविधता लाई है, बल्कि सफलतापूर्वक 60% एलपीजी का उत्पादन भी देश के भीतर ही कर रहा है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और माल ढुलाई लागत में वृद्धि के बावजूद सरकार ने खुदरा ऊर्जा कीमतों को स्थिर बनाए रखा है, जो आम नागरिक के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में बदलती स्थितियों के बीच ऊर्जा आपूर्ति, नौवहन अभियान और भारतीय नागरिकों को सहयोग सहित सभी क्षेत्रों में निरंतरता और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता से काम किया जा रहा है। तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि देश में एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कार्रवाई जारी है। गृहमंत्री अमित शाह ने लेह के जी वत्सल में तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल वी के सक्सेना और केंद्रीय गृह सचिव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ये प्रदर्शनी 1 मई से 14 मई तक लद्दाख में आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
2: यह पहली बार है कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को किसी प्रदर्शनी के लिए उनके स्थायी स्थान से दूसरे स्थान पर लाया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लद्दाख के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लद्दाख में इन पवित्र अवशेषों की उपस्थिति याद दिलाती है कि भारत की सभ्यता ने हजारों वर्षों से शांति और सह अस्तित्व का संदेश दिया है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि यह प्रदर्शनी दुनिया के हर कोने से धार्मिक नेताओं, शोधकर्ताओं, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों को एक मंच पर ला रही है। आम जनता के दर्शन के लिए ये पवित्र अवशेष कल से इस महीने की 10 तारीख तक लेह में रहेंगे और इसके बाद 11 और 12 मई को सांस्कार घाटी में ले जाए जाएंगे। लेह से आकाशवाणी समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
1: भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय आवश्यक सहायता उत्पाद सूची NLEAP पहल के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने चिकित्सा सहायक प्रौद्योगिकी के लिए कई मानक जारी किए हैं। BIS द्वारा कोहनी, बैसाखी, चलने वाली छड़ियां और 3 या अधिक पैरों वाली छड़ियों के लिए मानक प्रकाशित किए गए हैं। सरकार ने कहा है कि ग्रेट निकोबार परियोजना इस बात का उदाहरण है कि समग्र विकास किस तरह आर्थिक विकास, पारिस्थितिकी संरक्षण और सामाजिक समावेशन को संतुलित कर सकता है। सरकार ने कहा कि यह परियोजना भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, समुद्री और रक्षा उपस्थिति को मजबूत करने के लिए ग्रेट निकोबार की रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाती है, साथ ही मजबूत पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों और जनजातीय कल्याण तंत्रों को भी शामिल करती है। ग्रेट निकोबार परियोजना अंडमान सागर में भारत की उपस्थिति को मजबूत करने की एक रणनीतिक पहल है। झारखंड के 7 वर्षीय बालक ईशांक ने पाक जलडमरू मध्य पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बनने का रिकॉर्ड बनाया है। ईशांक ने श्रीलंका और भारत के बीच 29 किलोमीटर की दूरी को अपने आयु वर्ग के लिए रिकॉर्ड समय 3 घंटे 50 मिनट में पूरा किया। IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने लक्ष्य को 19 ओवर और 1 गेंद में हासिल कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स के KL राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अगला मुकाबला आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच चेन्नई में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में आज तेज बारिश हो सकती है। विभाग ने आज बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पश्चिम बंगाल में भी बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में रविवार तक गर्म और

0: Stadium in Jaipur. And that is the end of this news bulletin.
1: AIR Live News 24/7 पर अब वक्त हो गया है कार्यक्रम गीत बहार का. आइए सुनते हैं ये पहला गीत दिल्ली 6 से. आवाज़ है जावेद अली और कैलाश खेर की.

0: तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार और मैं हूं आपके साथ प्रीति कमल। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और फिर होंगे अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है। मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और

0: सिंहमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान होगा। इन केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आयोग ने कहा है कि इन मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का निर्णय पर्यवेक्षकों तथा रिटर्निंग अधिकारियों की रिपोर्ट पर लिया गया है। इन मतदान केंद्रों पर बुधवार को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोट डाले गए थे। रिपोर्टों के आधार पर आयोग ने इन मतदान केंद्रों पर चुनाव रद्द कर दिया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत कच्चे तेल के विश्व के 5वें सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है। सूरत में तीसरे वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि ऊर्जा संकट के बाद देश ने न केवल अपनी ऊर्जा आपूर्ति में विविधता लाई है, बल्कि सफलतापूर्वक 60% एलपीजी का उत्पादन भी देश के भीतर ही कर रहा है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और माल ढुलाई लागत में वृद्धि के बावजूद सरकार ने खुदरा ऊर्जा कीमतों को स्थिर बनाए रखा है, जो आम नागरिकों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच ऊर्जा आपूर्ति, नौवहन अभियान और भारतीय नागरिकों को सहयोग सहित सभी क्षेत्रों में निरंतरता और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता से काम किया जा रहा है। तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि देश में एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कार्रवाई जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने लेह के जी वत्सल में तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्रीय गृह सचिव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ये प्रदर्शनी 1 मई से 14 मई तक लद्दाख में आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: यह पहली बार है कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को किसी प्रदर्शनी के लिए उनके स्थायी स्थान से दूसरे स्थान पर लाया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लद्दाख के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लद्दाख में इन पवित्र अवशेषों की उपस्थिति याद दिलाती है कि भारत की सभ्यता ने हजारों वर्षों से शांति और सह अस्तित्व का संदेश दिया है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि यह प्रदर्शनी दुनिया के हर कोने से धार्मिक नेताओं, शोधकर्ताओं, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों को एक मंच पर ला रही है। आम जनता के दर्शन के लिए ये पवित्र अवशेष कल से इस महीने की 10 तारीख तक लेह में रहेंगे और इसके बाद 11 और 12 मई को सांस्कार घाटी में ले जाए जाएंगे। लेह से आकाशवाणी समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
0: भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय आवश्यक सहायक उत्पाद सूची NLEAP पहल के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने चिकित्सा सहायक प्रौद्योगिकियों के लिए कई मानक जारी किए हैं। BIS द्वारा कोहनी, बैसाखी, चलने वाली छड़ियां और 3 या अधिक पैरों वाली छड़ियों के लिए ये मानक प्रकाशित किए गए हैं। सरकार ने कहा है कि ग्रेट निकोबार परियोजना इस बात का उदाहरण है कि समग्र विकास किस तरह आर्थिक विकास, पारिस्थितिकी की संरक्षण और सामाजिक समावेश को संतुलित कर सकता है। सरकार ने कहा कि ये परियोजना भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, समुद्री और रक्षा उपस्थिति को मजबूत करने के लिए ग्रेट निकोबार की रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाती है, साथ ही मजबूत पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों और जनजातीय कल्याण तंत्रों में को भी शामिल करती है। ग्रेट निकोबार परियोजना अंडमान सागर में भारत की उपस्थिति को मजबूत करने की एक रणनीतिक पहल है। झारखंड के 7 वर्षीय बालक ईशांक ने पाक जलडमरू मध्य पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बनने का रिकॉर्ड बनाया है। ईशांक ने श्रीलंका और भारत के बीच 29 किलोमीटर की दूरी को अपने आयु वर्ग के रिकॉर्ड समय 3 घंटे 50 मिनट में पूरा किया। IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने लक्ष्य को 19 ओवर और 1 गेंद में हासिल कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स के KL राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अगला मुकाबला आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच चेन्नई में खेला जाएगा। भारत थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। भारत ने डेनमार्क में क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से हराया। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में आज तेज बारिश हो सकती है। विभाग ने आज बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, लद्दाख और पश्चिम बंगाल में भी बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. The Election Commission has ordered for repolling in 15 polling stations of West Bengal today. Repolling will be held at 11 polling stations of Magra.

जी आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। रात्रि के 3:10 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गजल गीत। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं गजल।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गजल और इसमें अगली गजल पेश है जगजीत सिंह की आवाज़ है, मेरी जिंदगी किसी।

सुन रहे हैं कार्यक्रम गजल, और आज की गजल में अगली पेशकश है जगजीत सिंह की ही आवाज में, याद किया दिल ने।

0: इसी के साथ ही आज का गजल का ये कार्यक्रम होता है यही संपन्न। आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के ठीक 4 बजे हैं।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

अभी आपने सुना भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना, आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 4:20 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कर्नाटक संगीत पर आधारित कार्यक्रम नाद ब्रह्मा। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे ताल वाद्य कचहरी, मृदगम वादन प्रस्तुत कर रहे हैं येल्ला वेंकटेश्वर राव, आपने प्रस्तुत किया है तालम आदि। आपके साथ सहयोगी गायक कलाकार हैं माधुरी मंगलम रामचंद्रन। तो लीजिए प्रस्तुत है ताल वाद्य कचहरी।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म में अभी आप सुन रहे थे तालवाद्य कचहरी। मृदंगम वादन प्रस्तुत किया येल्ला वेंकटेश्वर राव ने, आपने प्रस्तुत किया तालम।

आदि। आपके साथ सहयोगी गायक कलाकार थे माधुरी मंगलम रामचंद्रन। आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है।

जी आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 2 मई 2026। सुबह के 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। अब से कुछ ही देर में यानी सुबह 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। उसके बाद 5:20 का समय रहेगा देशभक्ति गीतों का। 5:30 आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वर रंजनी। स्वर रंजनी के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे ध्रुपद गायन। कलाकार होंगे नवल किशोर मलिक। आप प्रस्तुत करेंगे राग रामकली। 6:10 का समय रहेगा भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना का। 6:40 पर आप सुन सकेंगे चिंतन। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे सुकरात के दर्शन। छह बजकर 45 का समय रहेगा रामचरितमानस से पाठ का। आज आप सुन सकेंगे बालकांड का भाग 43। 6:55 पर समय रहेगा संस्कृत में समाचारों का। उसके बाद आप सुन सकेंगे हिंदी में और अंग्रेजी में समाचार। 7:10 पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम संगीतिका। आज इसके अंतर्गत प्रस्तुत किया जाएगा ब्रजेश मिश्रा के गाय भजन। 7:30 सुनेंगे गीतों भरी गुड मॉर्निंग का कार्यक्रम। 8:00 आप सुनेंगे समाचार। 8:45 पर स्वास्थ्य पत्रिका ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। आज आप सुनेंगे भेंट वार्ता जीवन शैली जनित रोग और होम्योपैथी से इलाज, और साथ ही भेंटवार्ता होगी मोटापा और आयुर्वेद विषय पर। 9:15 का समय रहेगा कार्यक्रम धरती आकाश का। आज का परिचर्चा का विषय रहेगा पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के लिए वैज्ञानिक जागरूकता। 9:00 आप सुन सकेंगे कार्यक्रम मिट्टी दी महक। प्रस्तुत करेंगी जसपाल कौर। 10:10 पर प्रसारित किया जाएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। 11:00 सबरस कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। 11:30 का समय रहेगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कार्यक्रम सुरमंजरी का, जिसमें आज आप सुनेंगे मुराद अली का वादन। 12:10 का समय रहेगा महिला कार्यक्रम घर आंगन का। प्रस्तुत करेंगी मनीषा बोस।

0: 1:10 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। आज की फिल्म रहेगी जो जीता वही सिकंदर। 2:30 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज रहेंगे शिने आहूजा। इतिहास प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की कुछ कार्यक्रमों की जानकारी 5 बजने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है। मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान होगा। इन केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आयोग ने कहा है कि इन मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का निर्णय पर्यवेक्षकों तथा रिटर्निंग अधिकारियों की रिपोर्ट पर लिया गया है। इन मतदान केंद्रों पर बुधवार को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोट डाले गए थे। रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने इन मतदान केंद्रों पर चुनाव रद्द कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया। ये याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ है, जिसमें कहा गया था कि मतगणना केंद्रों पर सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी ही होंगे। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा कि कोर्ट चुनाव आयोग के फैसलों में दखल नहीं दे सकता। पीठ में न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और मूर्ति जय माल्या बागची आज सुबह 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेंगे। 4 मई को मतगणना के चलते तृणमूल कांग्रेस ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत कच्चे तेल के विश्व के 5वें सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है। सूरत में 3रे वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि ऊर्जा संकट के बाद देश ने न केवल अपनी ऊर्जा आपूर्ति में विविधता लाई है, बल्कि सफलतापूर्वक 60% एलपीजी का उत्पादन भी देश के भीतर ही कर रहा है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और माल ढुलाई लागत में वृद्धि के बावजूद सरकार ने खुदरा ऊर्जा कीमतों को स्थिर बनाए रखा है, जो आम नागरिक के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में बदलती स्थितियों के बीच ऊर्जा आपूर्ति नौवहन अभियान और भारतीय नागरिकों को सहयोग सहित सभी क्षेत्रों में निरंतरता और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता से काम किया जा रहा है। तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि देश में एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कार्रवाई जारी है। गृहमंत्री अमित शाह ने लेह के जीवत्सल में तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्रीय गृह सचिव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ये प्रदर्शनी 1 मई से 14 मई तक लद्दाख में आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
2: यह पहली बार है कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को किसी प्रदर्शनी के लिए उनके स्थायी स्थान से दूसरे स्थान पर लाया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लद्दाख के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लद्दाख में इन पवित्र अवशेषों की उपस्थिति याद दिलाती है कि भारत की सभ्यता ने हजारों वर्षों से शांति और सह अस्तित्व का संदेश दिया है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि यह प्रदर्शनी दुनिया के हर कोने से धार्मिक नेताओं, शोधकर्ताओं, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों को एक मंच पर ला रही है। आम जनता के दर्शन के लिए ये पवित्र अवशेष कल से इस महीने की 10 तारीख तक लेह में रहेंगे और इसके बाद 11 और 12 मई को सांस्कार घाटी में ले जाए जाएंगे। लेह से आकाशवाणी समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
1: भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय आवश्यक सहायक उत्पाद सूची NLEP पहल के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो ने चिकित्सा सहायक प्रौद्योगिकियों के लिए कई मानक जारी किए हैं। BIAS द्वारा कोहनी, बेसाखी, चलने वाली छड़ियां और 3 या अधिक पैरों वाली छड़ियों के लिए मानक प्रकाशित किए गए हैं। सरकार ने कहा है कि ग्रेट निकोबार परियोजना इस बात का उदाहरण है कि समग्र विकास किस तरह आर्थिक विकास, पारिस्थितिकी संरक्षण और सामाजिक समावेश को संतुलित कर सकता है। सरकार ने कहा है कि ये परियोजना भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, समुद्री और रक्षा उपस्थिति को मजबूत करने के लिए ग्रेट निकोबार की रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाती है, साथ ही मजबूत पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों और जनजातीय कल्याण तंत्रों को भी शामिल करती है। झारखंड के 7 वर्षीय बालक ईशांक ने पाक जल डमरू मध्य पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बनने का रिकॉर्ड बनाया है। ईशांक ने श्रीलंका और भारत के बीच 29 किलोमीटर की दूरी को अपने आयु वर्ग के लिए रिकॉर्ड समय 9 घंटे 50 मिनट में पूरा किया। IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स

ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। अगला मुकाबला आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच चेन्नई में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जी आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर सुबह के 5:10 में है। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आओ योग करें।
1: आओ योग करें। आज हम जिस आसन को ले रहे हैं उसका नाम है गौमुख आसन। संस्कृत में गौमुख का अर्थ होता है गाय का चेहरा या गाय का मुख। इस आसन में पांव की स्थिति बहुत हद तक गौमुख की आकृति जैसी होती है, इसलिए इस आसन को गौमुख आसन कहा जाता है। यदि इसका अंग्रेजी में अनुवाद करें तो इसे काउ फेस पोज भी कहा जाता है। गौमुख आसन महिलाओं के लिए अत्यंत लाभदायक आसन है। यह गठिया, शाइटिका, अपचन, कब्ज, धातु रोग, मधुमेह, कमर में दर्द होने पर यह आसन बहुत अधिक लाभप्रद है। चलिए गौमुख आसन की विधि को जान लें और अगर हो सके तो साथ में कर भी सकते हैं। सबसे पहले अपने आसन पर दंडासन अर्थात दोनों पैरों को सामने सीधे एड़ी और पंजों को मिलाकर बैठें। यानी आसन पर आप सीधे बैठें और अपने पैरों को सीधे ले जाएं अपने सामने, एड़ी और पंजों को आपस में मिलाकर बैठें। हाथ कमर से सटे हुए और हथेलियां भूमि पर टिकी हुई, नजरें एकदम सामने। अब अपने बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को दाएं नितंब के पास रखें, दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। इस स्थिति में दोनों झंगाएं एक दूसरे के ऊपर रखी जाएंगी जो त्रिकोण आकार में नजर आएंगी। आप समझ रहे हैं ना, सबसे पहले अपने बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को दाएं नितंब के पास रखें। अब दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। इस स्थिति में दोनों झंगाएं एक दूसरे के ऊपर रखी जाएंगी और दिखने में ये त्रिकोणाकार नजर आती है। फिर श्वास भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर दाहिने कंधे को ऊपर खींचते हुए हाथ को पीछे पीठ की ओर ले जाएं। इसके बाद बाएं हाथ को पेट के पास से पीठ के पीछे लेकर दाहिने हाथ के पंजे को पकड़ें, गर्दन व कमर सीधी रखें। फिर श्वास भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर दाहिने कंधे को ऊपर खींचते हुए अब एक ओर से लगभग 1 मिनट तक करने के पश्चात दूसरी ओर इसी प्रकार करें। यानी वापस अपने हाथों को नीचे ले जाएं, वापस दंडासन में जाएं और अब बाएं पैर की जगह दाएं पैर को मोड़कर एड़ी को बाएं नितंब के ऊपर रखें, बाएं पैर को मोड़कर दाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। फिर श्वास भरते हुए बाएं हाथ को उठाकर बाएं कंधे को ऊपर खींचते हुए हाथ को पीछे पीठ की ओर ले जाएं। आपकी कोहनी आपके बाएं कान के साथ

0: मिल रही होगी। अब दाएं हाथ को पेट के पास से पीठ के पीछे से लेकर बाहिने हाथ के पंजे को पकड़ें और इस अवस्था में भी लगभग एक मिनट श्वास लें। कुछ देर बाद धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथों के लॉक को खोल दें और पुनः दंड आसन की स्थिति में आ जाएं। इस तरह आपका एक चक्र पूरा हुआ। हाथों के पंजों को पीछे पकड़े रहने की सुविधा अनुसार 30 सेकंड से एक मिनट की स्थिति तक रह सकते हैं। इस आसन के चक्र को 2 या 3 बार दोहरा भी सकते हैं। गोमुख आसन करते हुए कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए, जैसे किसी भी अन्य आसन को करते समय। यदि आपके हाथ, पैर और रीढ़ की हड्डी में कोई गंभीर रोग हो तो गोमुख आसन न करें। इसी तरह जबरदस्ती पीठ के पीछे हाथों के पंजों को पकड़ने का प्रयास न करें। जब आप इस आसन को करना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि ये प्रक्रिया इतनी आसानी से न हो पाए। जब धीरे धीरे आपका लचीलापन बढ़ता चला जाए और शरीर को कष्ट ना हो, तब कोशिश करें कि पीठ के पीछे हाथों के पंजों को पकड़ा जाए। चलिए अब इस आसन के लाभ से आपको अवगत करवाया जाए। गोमुख आसन करने से हाथ और पैरों की मांसपेशियां चुस्त और मजबूत बनती हैं। योग करें, हर रोज करें और अपने चेहरे पर योग करते समय मुस्कान को बनाए रखें, क्योंकि ये वो इन्वेस्टमेंट है जो आपके जीवन को सुखमय बना देगी, रोग से दूर कर देगी। कल सुबह इसी समय इसी चैनल पर आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर सुबह के 5:20 मिनट होने वाले हैं। उचित क्षणों में आप सुनेंगे देशभक्ति गीत।